0: एक स्किल डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट आप पे इन्वेस्ट कर रही है, फंडिंग दे रही है आपको, जिसका मेजर पोर्शन ग्रांट्स है आज की डेट में. और इसलिए आप मिस ना करें. ऑलरेडी हम 8 साल से बहुतों को असिस्ट कर चुके हैं, लेकिन गवर्नमेंट 1 हफ्ते के बाद रूल चेंज कर रही है. ग्रांट्स गवर्नमेंट बंद कर रही है, सिर्फ लोन आएगा. पीछे ना रहे, ऑलरेडी बहुत लोग की लाह ले चुके हैं. जीरो कंप्लेन, नो मीठी बातें. एंड इसमें आपका अच्छा फायदा है, लाइक आप फैमिली ऑफ फोर को अप टू 80,000, फैमिली ऑफ टू को लाइक अराउंड $45,000 मिलते हैं, जिसमें से $25,000 हाफ पोर्शन जो फंडिंग का है वो तो ग्रांट ही है. नो क्रेडिट चेक, नो कोलैटरल, नो गारंटर, नो एज लिमिट. फंडिंग आपके खाते में सीधा आती है. हमारी फीस काम होने के बाद 199 या 499 वन टाइम फीस है. स्किल डेवलप करें, आसान से कोर्सेज करें, फुली ऑनलाइन, कहीं नहीं जा रहे आप. और लाइक नो एज लिमिट फंडिंग हासिल करें. नंबर नंबर नंबर 437-264-3175, 437-264-3175, 437-264-3175. हुए भी तुसी कॉल कर सकते हो, साढ़े ऑफिस आओ, पीछे आ रहा हूँ. 437-264-3175
1: नंबर एक और फिर दे दो जी.
0: नंबर जी 437-264-3175. बहुत लोग की लाह ले चुके हैं, पीछे ना रहो. डेडलाइन आ गई है अब, लाइक जो नहीं लेगा उसका लाइक दे आर मिसिंग द बिग थिंग.
1: बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच.
2: घर दी वैल्यू जे तुसी वधाउणी है या एक्स्ट्रा इनकम लई लीगल बेसमेंट तैयार करवानी होवे या अपने घर नू नवी अते खूबसूरत लुक देनी है तां संपर्क करो नानक रेनोवेशन दे नाल. लीगल बेसमेंट, बेसमेंट फिनिशिंग, कॉन्क्रीट ड्राइववे, पैटियो या कोई भी रेनोवेशन दा काम नानक रेनोवेशन. एक्सपीरियंस टीम समय सिर काम करदे ने, बहुत ही रीजनेबल रेट. फ्री एस्टिमेट ले कांटेक्ट करो नानक रेनोवेशन 416-902-9293. नानक रेनोवेशन थोड़े रेनोवेशन दे सुपनेयां नू पूरा करनगे.
1: सो बिल्कुल जी, नानक रेनोवेशन और नाल दी नाल नानक रेनोवेशन नू तुसी कॉल भी कर सकदे हो, क्योंकि इन्हां नू एम्पलॉय चाहिए आ. सो जे तुसी कंस्ट्रक्शन दी जॉब लभ रहे सी जां तुसी जॉब किसी भी तरह दी लभ रहे सी तां तुहानू कंस्ट्रक्शन दी जॉब दे विच मदद करनगे. तुसी कॉल कर सकदे हो नानक रेनोवेशन वालियां नू. सो इन्हां दे कोले जॉब अवेलेबल आ, ऑन टाइम पे मिलेगी ते वधिया नाल एक्सपीरियंस कंस्ट्रक्शन दा, तां तुहानू पता रेनोवेशन दा एक्सपीरियंस तुहानू मिल जाणा. 416-902-9293 नानक रेनोवेशन. जे तुसी जॉब लभ रहे सी, इन्हां नू कुछ वर्कर चाहिए आ, कॉल कर सकदे हो 416-902-9293 नानक रेनोवेशन. जी सर, सत श्रीकाल. दमन जी, जी तुसी ऑनर हो.
3: जी भाई, सत श्रीकाल.
1: सत श्रीकाल जी, की हाल चाल?
3: ठीक ठाक, ठीक ठाक. तुसी सुनाओ.
1: ऑल गुड. चढ़दी कला जी.
3: वैसे तो भाई जी दस गए पहला वाले.
1: हाँ,
3: चमकीले
1: वांगू कच्ची बिल्ली कोई भी चलू.
3: नहीं, गला ना अपना खराब आ जा, जिवें तुसीं कहिंदे हो बैठिया बैठिया जिहा लगदा
1: जी,
3: अपने इथो चक लियो, ओल्ड मोगरा में चक लियो.
1: ओके,
3: ओल्ड मोगरा में चक के ते ओ जो कोसा जा पानी पाउना. ठीक है, ते एक चमचा पायो शहद दा
1: जी,
3: ते डिनर करन तो बाद ओरे दो ड्रिंक ला लियो.
1: नहीं, गर्मी दे विच ओल्ड मोक चल जूगी, ते सियाल च नहीं पीती.
3: ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਵੀਰੇ ਵਾਲੀ ਪੀਣੀ ਆ, ਦੋ ਪੇ ਦੋ ਛੋਟੀ ਲਾਉਣੇ ਨੇ.
1: ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਰਿਹਾ ਜਾਵੇ ਵੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਦੋ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣੇ.
3: ਮੈਨੂੰ
1: ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸਵਾਦ ਬਹੁਤ ਆ ਰਿਹਾ.
3: ਸਵਾਦ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ ਦੇਖਿਓ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆਉਂਦਾ.
1: ਐ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਜੀ ਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਾਤਾ ਮੇਰਾ, ਐ ਨਾ ਕਰੋ.
3: ਵਿੰਟਰ ਚ ਐਵੇਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਕਾਫੀ ਖਰਾਬ, ਸਿੱਟ ਨਾ ਆਵੇ ਪਤਾ ਨੀ ਕੀਤਾ. ਆਪਾਂ ਗਏ ਐਲ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਤੇ ਚੱਕੀ ਓਲਡ ਮੂਕ ਰਮ ਤੇ ਬਣਾਏ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਜੇ ਡਰਿੰਕ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਤੇ ਮਸਾਲ.
1: ਮਾਸਟਰ ਸਲੀਮ ਜੀ ਵੇਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਏ ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰ ਜੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵੀਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਬਹੁਤ ਮੁਹੱਬਤ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ। ਸੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਮਾਸਟਰ ਸਲੀਮ ਦੇਖਣ?
3: ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ।
1: ਅੱਛਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ? ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਵੀਰੇ, ਬਹੁਤ ਮੁਹੱਬਤ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ। 905-673-33-3 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਸਲੀਮ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਆ, ਮਾਸਟਰ ਸਲੀਮ ਦੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਆ, ਮੈਂ ਟਿਕਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ $29 ਦੀ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਟਿਕਟਾਂ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਟਿਕਟਾਂ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰ ਆਓ। ਸੋ ਮੈਂ ਡਿਸਕਾਊਂਟਡ ਕਰਕੇ ਟਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆਵਾਜ਼, ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੰਗੀਤ, ਚੰਗਾ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸ਼ੋਅ ਆ, ਅਤੇ ਐਸੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਵਾਰ ਵਾਰ ਐਸੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਇੰਨੀਆਂ ਪੱਕਾ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਚੰਗਾ ਸੰਗੀਤ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਜੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, $30-$40 ਲਾ ਕੇ, $20 ਲਾ ਕੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੋਹਣੀ ਚੰਗੀ 4 ਘੰਟੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਵਰਥ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਂਸ ਆਫ ਹਿਊਮਰ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਟਰ ਸਲੀਮ ਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਵੇਖਣੀਆਂ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 437-800-0001-437-800-0001 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਖਬਰਾਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਤਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਮਾਸਟਰ ਸਲੀਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਣ ਲਈਏ।

0: शादी दी मूवी बनवाने ली या रिंग सेरेमनी ली वेडिंग एनिवर्सरी जागो प्री वेडिंग बर्थडे और एनी इवेंट दी वधिया वीडियोग्राफी ते फोटोग्राफ शूट कर ली याद रखो देसी सिनेमैटिक फिल्म अपने हाई एंड इक्विपमेंट्स ते क्रिएटिव आइडियाज नाल बेस्ट रिजल्ट प्रोवाइड कर देने बुकिंग ले आज ही कॉल करो जगदीश सिंह नो 416-930-1251 416-930-1251
1: मिलना इवेंट्स लेके आ रहे ने तुहाटे वास्ते रू का सफर टूर जी हाँ लाइव मास्टर सलीम कॉन्सर्ट इन टोरंटो 24 जुलाई नो मिसिसागा कन्वेंशन सेंटर दे विच सिर्फ से सिर्फ मिलना इवेंट्स दे नाल ता फिर देर किस गल दी तारीख नोट कर लो 24 जुलाई अपनी टिकटा अज ही बुक करो लॉग ऑन करो www.milnatickets.com ते स्पॉन्सरशिप अते होर किसी भी जानकारी लई तुसी रोहन शर्मा अते प्रभ संधू नू कॉल कर सकदे हो 647-783-9873 या 437-870-0001 ते

0: कमाल का कैच था यार, यकीन ही नहीं आ रहा।
1: तुम्हें इस पर यकीन नहीं आ रहा तो ये सुनो, सेव ऑन एनर्जी वाले मुफ्त इलेक्ट्रिक हीट पंप दे रहे हैं अगर तुम्हारे घर में इलेक्ट्रिक या ऑयल हीटिंग है।
0: इस बात पर मुझे पूरा यकीन है, वो तो इंस्टॉलेशन का 100% खर्चा भी खुद उठाते हैं। अगर तुम्हारे घर में ऑयल हीटिंग है तो वो ऑयल टैंक भी बिल्कुल मुफ्त बाहर निकाल कर देंगे और हीट पंप से तुम्हारे हीटिंग बिल्स 50% तक कम हो सकते हैं।
1: तुम्हें ये सब कैसे पता?
0: क्योंकि मैंने भी पिछले साल ये लगवाया है।
1: अच्छा, वो क्या वेबसाइट थी?
0: saveonenergy.ca/EAP
2: This is AM 530 CHLO AM serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.

0: ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਾਂਸ਼ ਜੁੜੇ ਆ, ਸਰਾਂਸ਼ ਨਾਗਪਾਲ ਯੂਨੀ ਗਲੋਬਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਇੰਕ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਯੂਨੀ ਗਲੋਬਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਇੰਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਅਵੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ। ਸਰਾਸ਼, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਜੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਇਆ ਨਾ, ਪਿਆਰ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਏ, ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪੈਸਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਪੈਸਾ ਹੋਊਗਾ ਅੱਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੀ ਚੱਲਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲਈਏ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਨੂੰ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ?
1: बिल्कुल जी, ऐसा ही है। सही काम हम सही तरीके से 8 साल से कर रहे हैं। हमें लाइक कॉल आते हैं, हमें लोग अपने एक्सपीरियंस बताते हैं, फिर कहते हैं बीच में आ जाओ हमारे पास, मतलब है ना, कहीं कोर्स कर रहे हैं फिर कहते हैं सर हमें आपके पास आना है, लेकिन फिर उनके लिए हम मना कर देते हैं क्योंकि ना उनको बेनिफिट नहीं है उसमें बीच में कोर्स छोड़ने का, राइट। तो इसलिए पहले से ही सही जगह से काम कराएं कि कोई डिफिकल्टी ना आए, और मतलब सारा काम ईमानदारी से हो, और आपके पैसे कम से कम लगे, चीटी जितने पैसे लगे, क्योंकि हम वॉल्यूम में होलसेल में काम करते हैं, तो इसलिए आपके लिए बेनिफिट रहेगा अगर आप हमारे थ्रू काम कराएं। यूनिक ग्लोबल एडवाइजरी कंपनी का नाम है, मिसिसागा में हर एंटरी डरी का ऑफिस है, 8 साल से काम कर रहे हैं, इतनों को असिस्ट कर चुके हैं। एजुकेशन फंडिंग है, गवर्नमेंट की फंडिंग है, बैंक की नहीं है। आप स्किल हासिल करते हैं, फंडिंग हासिल करते हैं, साथ में अपने खाते में, मेरे नहीं, अपने खाते में 30,000 से 100,000 की फंडिंग है, जिसका मेजर पोर्शन आज की डेट में ग्रांट है। कब तक? सिर्फ कल तक। गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज कर रही है, आपको रश नहीं कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज कर रही है। 1 अगस्त के बाद जो नया अकेडमिक सेशन स्टार्ट है उसमें ग्रांट बंद बंद बंद है, लोन आएगा, ग्रांट नहीं आएंगे। अभी एनरोल करें, कॉल करें, ऑफिस आए
0: जी। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਬਸ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਐਨਰੋਲ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਡੇਟ ਕਿਹੜੀ ਹੈ
1: ਜੀ? ਕੱਲ ਤੱਕ, ਸਿਰਫ ਸੈਟਰਡੇ ਤੱਕ।
0: ਕੱਲ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਓਕੇ।
1: ਬੈਚ ਸੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਬੈਚ 29 ਕੋ ਸਟਾਰਟ ਹੈ, ਇੱਕ 27 ਕੋ ਹੈ, तो उसमें सैटरडे लास्ट डेट है एनरोलमेंट की। उसके बाद ग्रांट गवर्नमेंट बंद कर रही है, तो नो एज लिमिट, नो क्रेडिट चेक, फंडिंग आपके खाते में आती है, नो गारंटर, नो कलेटरल। इसमें सारे असली कागज लगते हैं, आपका NOA, बर्थ सर्टिफिकेट बच्चों के, और आपका मैरिज सर्टिफिकेट। कोई हेरा फेरी नहीं है, कोई सेटिंग नहीं है, कोई अप्रोच नहीं है, कोई कमीशन नहीं है, सारा काम A to Z ट्रांसपेरेंट, एंड टू एंड गवर्नमेंट फंडिंग दे रही है। बैंक नहीं देगा जो आप नकली कागज दे देंगे, असली काम असली तरीके से कराएं। कॉल करें 437-234-31-75, फंडिंग ग्रांट हासिल करें 437-234-31-75।
0: अच्छा, इसका मतलब ये है कि जो इनकम है वो कम होनी चाहिए, फैमिली इनकम जो है लेस देन 70,000 तक होनी चाहिए।
1: बिल्कुल जी, आप PR सिटीजन प्रोटेक्टेड पर्सन है, कहीं भी ओंटारियो में रहते हैं, लाइक इसमें आपकी इनकम अगर 2024 के नोटिस और असेसमेंट पे लेस देन $70,000 है, सिर्फ तभी आप एलिजिबल है, तभी आप हमें कॉल करें। लोगों की इनकम ज्यादा होती तभी हमें कॉल करते हैं, हम मना ही करते हैं उनको। अब उसमें आती है लाइक आप उबर ड्राइवर है, इनकम किसकी कम होती है? उबर ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, सेल्फ एम्प्लॉयड, स्मॉल बिजनेस ओनर, हाँ, सिंगल मदर, अनएम्प्लॉयड, इन्हीं लोगों को ज्यादा बेनिफिट है। नो एज लिमिट, पेंशन पे है, एलिजिबल है, कोई एज लिमिट नहीं है, नो क्रेडिट चेक, नो कोलेटरल, नो सिक्योरिटी, नो गारंटर। 30 से 100,000 की फंडिंग आपके खाते में, जिसका मेजर पोर्शन आज की डेट में ग्रांट्स है। कोई चाबी, कोई मीठी बात है, कोई ग्रांट वो नहीं है, सेटिंग नहीं है कोई, सारा साफ काम है।
0: अच्छा, जो नोटिस ऑफ असेसमेंट चाहिए वो 2024 का चाहिए कि 25 का चाहिए?
1: 24 का चाहिए आज की डेट में, क्यों? क्योंकि एक अभी अकेडमिक सेशन चल रहा है, 25-26 चल रहा है अकेडमिक सेशन, अकेडमिक ईयर कहते हैं,
0: ठीक है।
1: तो अभी इसमें चाहिए 2024 का NOA, 1 अगस्त के बाद चाहिए 2025 का NOA। लेकिन क्या करेंगे सर, 1 अगस्त के बाद तो ग्रांट ही बंद हो रही है, लोन ही आएगा, क्या करोगे लोन का? लोन तो पहले ही बहुत है हमारे पे।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और जेडे थानू कॉल कर रहे हैं उन्हां दी ठा ठा ग्रांट उन्हां दे अकाउंट च आ रही है, फिर तुसी तां बिजी बड़े चल रहे हैं।
1: बिल्कुल जी, अगर आप हमें कॉल करेंगे हम आपको जरूर रिप्लाई करेंगे, थोड़ी
0: बिल्कुल
1: देर में शायद आपको कॉल बैक आ जाएगा। बेहतर बेहतर ये रहेगा अगर आपको, आपने पास इंटरव्यू सुनी लिया है, आप एलिजिबल है, तो ऑफिस ही है हमारे यहाँ डायरेक्टली 218 एक्सपोर्ट बुलेवर्ड पे है, अरंटारियो डेरी पे। और इसमें लाइक आपका बेनिफिट ज्यादा है इसमें, हमने सब कुछ ट्रांसपेरेंट रखा है, फंडिंग के नाम से हम लोग डर जाते, डरना चाहिए, बट यहाँ कोई भी कागज नहीं हिल रहा। सिर्फ कागज नहीं हिल रहा तो कोई फ्रॉड नहीं है, और जो फ्रॉड नहीं है मतलब हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं, काम ईमानदारी का ही, हम कोई और फंडिंग में डील ही नहीं करते। तो इसलिए आप चाबी मतलब अपना नुकसान ना करें, फंडिंग हासिल करें, ग्रांट ग्रांट ग्रांट हासिल करें।
0: अज किन्ने के साडे क्लाइंट्स हैगे जिन्हां दी फंडिंग गई है उन्हां दे अकाउंट च?
1: हाँ जी, आप मान के चले अभी 10:30 ही हुआ है, दिन शुरू हुआ है, अभी तक 3 बंदों की फंडिंग आई है। एंड ऑफ द डे तक 8-10 बंदों में एवरेज उनके खाते में फंडिंग, क्लाइंट के खाते में फंडिंग आ जाती है एवरेज एक दिन में 6-10 बंदों में, जिन्होंने मई और जून के बैच में ज्वाइन करा है। तो इसलिए आप मिस ना करें। लास्ट वीक अराउंड 39 बंदों की फंडिंग उनके खाते में ठा ठा करके गिरी है। तब हमारी छोटी सी फीस है 200 या 500, 199 या 499 डॉलर, डिपेंडिंग ऑन द कोर्स, नॉट डिपेंडिंग ऑन योर फंडिंग। हमारी गुल्लक पे हमारी नजर है, आपकी फंडिंग में नजर नहीं है।
0: ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜੀ, ਯੂਨੀ ਗਲੋਬਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਇੰਕ ਦੇ ਸਰਾਸ਼ ਨਾਗਪਾਲ ਜੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਜਦ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਕਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਬੜੇ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਵੀ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ 2-3 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਾਸ਼ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਬੜੇ ਬਿਜ਼ੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਐਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਬੜਾ ਬਿਜ਼ੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ 437-264-7274-337-264-3175 ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਰਾਸ਼ ਕੁਛ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?
1: ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇਸ ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਫੰਡਿੰਗ। ਅਗਰ ਆਪ ਫੈਮਿਲੀ ਆਫ 2 ਹੈ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਕਪਲ ਹੈ, ਯੰਗ ਕਪਲ ਹੈ, ਅਪ ਟੂ 45,000 ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਆਪਕੇ ਖਾਤੇ ਮੇ ਆਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੇ ਸੇ 25,000 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਂਟ ਰੈਸਟ ਪੋਰਸ਼ਨ ਇਜ਼ 0% ਪੇ ਆਪਸ਼ਨਲ ਲੋਨ। ਅਗਰ ਆਪ ਫੈਮਿਲੀ ਆਫ 5 ਹੈ, 3 ਬੱਚੇ ਆਪਕੇ ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੋ ਅਪ ਟੂ 100,000 ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਆਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੇ ਸੇ 50,000 ਡਾਲਰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੈ, ਰੈਸਟ 50,000 ਡਾਲਰ 0% ਪੇ ਆਪਸ਼ਨਲ ਲੋਨ ਹੈ। सारे कोर्सेज ऑनलाइन है, आप कहीं नहीं जा रहे, घर के कंफर्ट से कर रहे हैं, कोई इसमें एग्जामिनेशन नहीं है, आसान से असाइनमेंट्स हैं, 2-3 घंटे आपने मंडे टू फ्राइडे लगाने हैं। कुछ कोर्सेज में टीचर है ही नहीं तो वो बहुत ही इजी है, तो इसलिए कोई चाबी नहीं है। आप हाउस वाइफ हैं, आप बच्चे मैनेज कर रहे हैं, तो आप साथ में कोर्सेज कर सकते हैं, फोन पे लैपटॉप पे क्लासेस लगाएं, आसान है, इजी, बेसिक इंग्लिश आपको आनी चाहिए। नंबर नोट करें, ऑफिस आए, हमारी फीस कितनी, आपका फायदा कितना 30,000 से 100,000 का, जिसका मेजर पोर्शन ग्रांट है, हमारा फायदा कितना 199 से 499 डॉलर, क्योंकि वॉल्यूम में काम करते हैं। जैसे गवर्नमेंट रिफ्यूजीज पे 1.1 बिलियन, 1 बिलियन डॉलर गवर्नमेंट ऑफ कनाडा रिफ्यूजीज के होटल बिल पे लगाती है, तब पीआर सिटीजन कहते हैं सर हमें रिफ्यूजी बना दो, लेकिन जब गवर्नमेंट आज आप पे इन्वेस्ट कर रही है तो आप हिचकिचा रहे हैं, पीछे ना रहे, कॉल करें, ऑफिस है नंबर 437-264-7175-437-264-7175, हुणे कॉल करो, एस्टीमेट लो 437-264-7175-437-264-7175।
0: थैंक यू वेरी मच।

0: ओ बल्ले मानिंग साहब, क्या बात है। अच्छा भी ये किसे नो पता गीत केड़ा? गाना कुलदीप मानिक साहब का ही है, पर जे किसे नो पता गीत केड़ा? जिन्हें मानिक साहब दीवाने होंगे उन्होंने पक्का गाला पता होगा गीत केड़ा। और मैं सुनाया नहीं, ये आम जा खास चीज है, गीत है जो बड़ी महंगी चीज है ना, जी यूज की गई है, जिक्र किया गया। 905-673-3337 905-673-3337 गीत है केड़ा? पर गीत है मानिक साहब का ही है, दस्यो यार मैनू, बुझियो यार जे बुझिया जाता दे। हरजीत जी बस बस बस बस इन्ना की सुनाओ, इस तो अगे नहीं सुना। ईगल ट्रक सेल्स वाले प्रोग्राम स्पॉन्सर कर रहे हैं, 416-819-6000 के कॉक दी जा सकती है। यूज ट्रक लेने हैं, चोटी के ट्रक लेने हैं, ते वास्ते हाजिर है ईगल ट्रक सेल्स वाले, 416-819-6000। हेलो,
1: हाँ जी भाई, सत श्री अकाल।
0: सत श्री अकाल प्यारे हो,
1: बहुत वधिया प्रोग्राम चल रहा भाजी। मैं कदे कदे कॉल करदा तुहानू, पर नजारा आ जांदा तुहाडी आवाज सुन
0: के। मैं क्या आपां खिच के रखी दा काम पूरा, इदा नहीं आपां
1: बट भाजी आ जिहड़ा तुसीं आ सोंग दी ट्यून लाई है, मेरे ख्याल इह तां सोंग दा मुक्क गई फीमत विचों यार, इह वेखदा
0: इह बड़ी महंगा काम आ। थैंक यू बट नैक्सट कॉल। हैलो, आई डोंट नो, तुसीं दसना भी। हैलो
2: हैलो,
0: हाँ जी
2: सत
0: श्री अकाल वीरा जी।
2: हाँ जी भाजी ने दस तो सही सीगा, ओह
0: केड़ा इही हैगा ना।
2: हाँ जी हाँ जी,
0: थैंक यू तुहाडी कॉल दा। नैक्सट कॉल, हैलो।
3: ਹਾਂਜੀ
0: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।

0: गुड मॉर्निंग आफ्टरनून, वेलकम टू डेव टाला शो। आज के प्रोग्राम में बहनों और भाइयों आप सबका स्वागत है। आशावादी उम्मीद करते हैं कि तुहाडा अज दा दिन अच्छा गुजर रहा होगा। साडी कोशिश रहेगी 2 बजे तक नैशनल इंटरनेशनल खबरों नाल जोड़ के रखिए। अगे चल के वतनों दूर तुहाडे लई पेश किया जाएगा। सुखी निज्जर और किरण जी साडे नाल स्टूडियो च हाजर ने। सब तो पहला छतरी छाता रिपोर्ट हाजिर है, क्योंकि छतरी छाता रिपोर्ट जिहड़ी है इहदे नाल ही साडा दिन वधिया लगता है। इहदे नाल ही गलूम शलूम जिहा हो जांदा, इहदे नाल ही पकौड़े खाण नूं दिल करदा ते इहदे नाल ही मूड बनाउण नूं दिल करदा। अज सूरज सिंह 558 ते आया, 849 ते चले जाणा। मामा चंद सिंह कल अज शाम नूं 537 ते आएगा ते कल नूं 1:15 ते सवेरे चले जाणा। अज दा तापमान 28 डिग्री, सारा दिन सूरज चमकेगा। कल नू 29 डिग्री, मिक्स ऑफ सन एंड क्लाउड। संडे नू 30 डिग्री, मिक्स ऑफ सन एंड क्लाउड, बारिश पैण दे आसार नजर आउंदे ने। मंडे नू 30 डिग्री ते चखड़ चोले थंडरस्टॉर्म ते बारिश बदलवाई रहेगी। ट्यूजडे नू 29 डिग्री, मिक्स ऑफ सन एंड क्लाउड ते बुधवार नू 26 डिग्री, सूरज चमकदा रहेगा। चाइना तो खबर आ रही है घट्टो घट 11 लोगों की मौत हो गई, 50 मिसिंग आ जदों उत्थे लैंडस्लाइड होया। कल खबर सुनाई सी ट्रंप ने साउदी अरेबिया नूं हरी झंडी दित्ती, तुसीं परमाणु हथियार बना सकदे हो। हुण कहिंदा गल सुणो, ओए इजराइल नूं मनना पैणा वी इजराइल दी होंद हैगी आ। कहिंदा नहीं नहीं मनना। पिछले हफ्ते डेढ़ हफ्ते तों असीं ब्लू जिहड़ी कोई खबर नहीं सुनाई, ना गुरप्रीत पुरभा जी ने सुनाई ना मैं सुनाई, क्योंकि हार रहे जी। कहदी खबर है यार, कल तां बैजा कराती 3-1 दे नाल रेस नूं जिते जी। जंक्शन लई 6474294040 केटरिंग करानी है छोटी वड्डे फंक्शन लई, नो प्रॉब्लम 6474294040। लाइव कुकिंग करानी है करे, नो प्रॉब्लम 6474294040। तुसी इनारे बैंकट हॉल या लॉज में छोटी वड्डी पार्टी करनी है, नो प्रॉब्लम 6474294040। 647-429-4040। मॉर्गेज सॉल्यूशन दे गुरप्रीत समरा जी, तुहाडे मकान दी रिन्यूअल आ रही है, तुसी अपनी मॉर्गेज बी सी लैंडर तो हटा के ए लैंडर नाल करवानी है और इंटरेस्ट रेट ते भी बचत करनी है। कॉल 9054609099। प्री अप्रूवल भी करवा के दिंदे हन तां कि कॉन्फिडेंस नाल मकान लै सकदे हो। 80-90 हज़ार बेस नूं बनाउण लई चाहीदे ने। मकान लैण वेले इस दा भी अरेंजमेंट कीता जांदा है। गुरप्रीत समरा नाल बैठ के डिस्कस करो। 2155 B स्टील्स एवन्यू नियर टॉप रूम यूनिट 32। 9054609099 9054609099 इन्हां दा नंबर है। सज्जना, रब कोलों मंगणा छड्डो, मेहनत करो, रब आपे देवेगा। जिस दिन रब मंगण ते आ गया ना, आखरी साह भी लै जावेगा। सीरियसली लो जी, लैंडस्केपिंग दा आ सुनेहा सुनो।
1: कोई चाहुंदा है कि ओदा घर सब तो सोहना दिखे, ते जे तुसी भी एही चाहुंदे हो तां मिलो AAA लैंडस्केपिंग कंपनी लिमिटेड वालेयां नूं। जे अपने घर दे बैकयार्ड नूं बनाउणा चाहुंदे हो होर भी खूबसूरत, या फिर करवाउणा चाहुंदे हो लैंडस्केपिंग या इंटरलॉकिंग, सारा काम टॉप दा करांगे अते सब तो बेस्ट रेट्स भी देणगे। AAA लैंडस्केपिंग, कॉल 6447-784-1213।
2: पूरे 40 साल हो गए अपने व्याह नूं, फिर किथे सेलिब्रेट करन दा इरादा है?
3: मेरी मन्नो, आपां पिंड ना चलिए।
2: धर्म नाल आ तां तू मेरे मन दी गल ही कहती है, पर इन्नी छेती टिकटां कित्थों मिलणगियां?
3: गिल इंटरनेशनल ट्रैवल तो अपने साथ वर्गे ही साथ है उन्हां दा, अपने क्लाइंट्स दे नाल पिछले 40 सालां तो।
2: 40 सालां तो बेदाग सर्विस गिल इंटरनेशनल ट्रैवल।
3: क्वालिटी सर्विस, वधिया रेट्स ते बेस्ट डीलिंग है उन्हां दी पहचान। इंडिया, पाकिस्तान या दुनिया दे किसी भी कोने च करना होए ट्रैवल,
4: सर्विंग कैनेडा नेशन वाइड।
3: 9056718400 or 9057968800 or visit giltravels.ca।
0: Punjabi by nature, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਈਕਾਨ ਇਵੈਂਟ ਸਪੇਸ ਇਨ ਮਿਸਾਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਐਲੀਗੈਂਟ ਬੈਂਕਵਟ ਹਾਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਯਾਦਗਾਰੀ ਮਾਹੌਲ ਅੰਦਰ ਮਨਾਓ ਜੀ। ਫੂਡ ਨੰਬਰ 1, ਸਜਾਵਟ ਨੰਬਰ 1, ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1, 100 to 1200 ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਗੇ ਆਈਕਾਨ ਇਵੈਂਟ ਸਪੇਸ 88 ਡਿਕਸੀ ਰੋਡ ਇਨ ਮਿਸਾਗਾ। ਲੱਕੀ ਵਾਲੀਆ ਜਾਂ ਮੋਨੂ ਵਾਲੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਘੰਟੀ ਖੜਕਾ ਲਓ 905-965-2631।

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दियां सारियां आइटमां डॉलर 475 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन पिस्ता रसगुल्ले और जस्ट डॉलर 5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असीं लैके आए हैं कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026। 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने। 2 इन ब्रैम्पटन, 1850 एल्बन रोड, ईटोबीको। वधेरे जानकारी ले कॉल करो 416-213-1165 ते 416-213-1165।
1: रोकी तू अपनी इंश्योरेंस किस्तों करवांदा यार?
2: ओए कल्ला मैं नहीं, अपनी कम्युनिटी दा हर बंदा इंश्योरेंस एक्सपर्ट मोना मेंगी जी कोल करवांदे ने।
1: वाह यार, नंबर ता दई मोना जी दा।
2: हां जी, तुसी भी नोट करो, इंश्योरेंस कोई भी होवे,
3: इंश्योरेंस फॉर यू दी मोना मेंगी जी।
2: जेडे लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, सुपर वीजा इंश्योरेंस अते हर तरह दी इंश्योरेंस दे लई भरोसेमंद नाम है। हुणे कॉल करो 416-509-1509 ते।
3: याद रखो, मोना मेंगी फ्रॉम इंश्योरेंस फॉर यू,
2: 416-509-1509
3: और visit insuranceforyou.ca।
4: Kataria Tours and Travels located near 2883 Derry Road, East Upper Airport and Derry, the intersection upper. Tusi cheap flight tickets Nepal de vichon Toronto to Delhi, Delhi to Amritsar de route options suno chahide ne. Jan tusi visa services Nepal de vichon puri family vacation upper jaan di soch rahe ne, jithe tuhanu all inclusive vacation packages bhi milde ne. Pahunchna va ji Kataria Tours and Travels, Airport and Derry, the intersection upper. Call kar sakde ho 905-678-1200 905-678-1200 Kataria Tours and Travels, Airport and Derry, the intersection over.
5: Aaj
6: ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਢਿੱਲੋਂ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਨੋ ਫ੍ਰੀਜ਼ਿੰਗ ਨੋ ਬਫਰਿੰਗ ਵਾਲਾ 4K ਅਲਟਰਾ ਹਾਈ ਕੁਆਲਿਟੀ IPTV ਬਾਕਸ ਹੋਵੇ। ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਹੀ ਹੈ।
5: ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ, ਬੰਗਲਾ ਹੈ, ਗਾੜੀ ਕਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ?
6: ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਮੂਵੀਜ਼ ਨੇ, ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਜ਼, ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼, ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਈਵ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਸ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵਰਲਡਸ ਬੈਸਟ ਤੇ ਹਾਈਐਸਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲਾ IPTV ਬਾਕਸ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਢਿੱਲੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕੋਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰੇਡੀਓ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ। ਹੋਰ ਦੱਸ ਕਿਆ ਚਾਹੀਦਾ?
7: ਚੱਲ ਕੇ ਰਹੇ ਆਪਰ?
6: ਓ ਭਾਜੀ, ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ 40 ਇਅਰਸ ਇਨ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਬਿਜ਼ਨਸ।
8: ਡਾਊਨ ਕੋ ਪਕੜਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ।
6: ਪਰ ਢਿੱਲੋਂ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਓ, ਐਬਨੀਜ਼ਰ ਐਂਡ ਗੋਰ ਰੋਡ 905-204-13 ਜਾਂ ਢਿੱਲੋਂਵੀਡੀਓ.com। ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੇਵਾ?
9: ਅੰਟੇਰੀਓ ਗੁਰਦੁਆਰਾਸ ਕਮੇਟੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਗੇਮਸ ਕੈਨੇਡਾ, ਜੁਲਾਈ 31 ਤੋਂ 3 ਅਗਸਤ ਤੱਕ। ਓਪਨਿੰਗ ਸੈਰੇਮਨੀ ਸੈਟਰਡੇ ਅਗਸਤ 1 ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਬ੍ਰੈਂਟਨ ਸੌਕਰ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ। ਸੌਕਰ, ਕਬੱਡੀ, ਫੀਲਡ ਹਾਕੀ, ਵਾਲੀਬਾਲ, ਬਾਸਕਟਬਾਲ, ਵੇਟਲਿਫਟਿੰਗ, ਗੱਤਕਾ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਿੱਖ ਗੇਮਸ ਕੈਨੇਡਾ .ca ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਕਾਲ ਕਰੋ 647-807-0007। ਇਹਨਾਂ ਗੇਮਸ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਹੈ।
10: नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे। आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ, जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज।
11: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129, 35 रेजोल्यूशन ड्राइव, ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा। कॉल 905-460-8888, दैट्स 905-460-8888।
10: सर्विंग फ्रॉम 2 लोकेशंस, बेस्ट सर्विस, बेस्ट प्राइस, स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ।
12: ओ पंजाबी बोले ना ते मैं इंग्लिश विच अड़दा सी, ओ मेरी लुक ते मरदी सी ते मैं ओदे लक ते मरदा सी। सत श्री अकाल जी, मैं हां थोड़ा अपना रोशन प्रिंस ते तुसी सुन रहे हो वतनों दूर रेडियो।

0: सब्सिडी फर्स्ट या सेकंड मॉर्गेज या रीफाइनेंस करवाना चाहते हो तब तुसी भी अपनी गड्डी मोड़ो 1200 डेरी रोड ईस्ट यूनिट 22 मिसिसागा 416-804-2015 416-804-2015।
1: दोस्तों देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो नू या चलो एएम 530 ते 24/7 जिन्ने भी प्रोग्राम आउंदे ने उन्हां नू सुनन वास्ते जां देश प्रदेश नू लाइव देखण वास्ते लॉग इन करो साडी वेबसाइट नू www.deshpradeshradio.com या www.deshpradeshtv.com लाइव सुनना चाहते लाइव ते क्लिक कर लो जे वाच करना चाहते हो तो उत्ते क्लिक करो या फिर अपने IPTV बॉक्स दे उत्ते पंजाबी सेक्शन क्लिक करो उधर उत्ते जाके देश प्रदेश टीवी नू क्लिक करो उत्ते तुसी सुन भी सकदे हो वेख भी सकदे हो 24/7 मॉर्गेज दी दुनिया दे विच चमकदा सितारा प्रभदीप सिंह की तुहाडी मॉर्गेज रिन्यू होण वाली है तुसी प्राइवेट मॉर्गेज स्टक हो गए हो ते वध इंटरेस्टेड पे कर रहे हो ए तुहाडी मॉर्गेज बैंकां नाल करवा के लो इंटरेस्ट रेट ते गरंटी नाल करवाउणगे ते नाल दी नाल लाइन ऑफ क्रेडिट भी तुहाडी बनवा देणगे ते $3500 तुहानूं कैश वापस भी दित्ता जाएगा या फिर बिजनेस लोन लेना या लाइन ऑफ क्रेडिट बनानी है अज ही कॉल करो प्रभदीप सिंह 416-710-7524 416-710-7524 ते प्रभदीप सिंह।